0: कोटों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है, हम उस देश के बासी हैं जिस देश में गंगा बहती है।
1: कोटों पे सच्चाई रहती है।
2: मुकेश, जो आप सबके प्रिय गायक थे, मेरे बड़े भैया थे। मुकेश भैया एक महान कलाकार थे, एक महान आत्मा थे और बहुत प्यारे भैया थे। कोई है जो उनकी याद में बेचैन नहीं? जब जब पुरानी बातें याद आती है तो आंखें भर आती है। उनके दिल से निकली हुई इस पुकार को भला कौन

उजाला रेडियो डे अवे प्लस पर देश भर में सुनाई देता है। तू बता दे सबको इसे बताते ऑटो में तू सुन सके तू घर में सुन सके है उजाला रेडियो और उजाला रेडियो साथ में ले जाइए तू चाहे जहां पर जाइए तू जान है तो उजाला रेडियो।

0: की इजाजत हो तो सुना
1: दूं। उजाला रेडियो, तू जाने तो मेरा फेवरेट रेडियो स्टेशन।

0: You are. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Good day with RJ. Goedemorgen met RJ. Hallo RJ. Goedemorgen RJ. Hallo. Ujjala ke saath. Ghar ghar mein. Auto mein. चाहे जहां पर भी हैं आप उजाला ही उजाला सुनते हैं उजाला के साथ अनहेल गुड मॉर्निंग मैं आर जे गुड मॉर्निंग

0: live vanuit de Hoofdstad. Is jouw business toe aan de volgende stap? Klaar om te groeien of nog groter te worden? Adverteer op Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl.
1: रात और दिन के देवे है तोर साथ, के तोर साथ सोते है, के तोर साथ जागे है, केकर साथ तू ओतो में घूमे है, और केकर साथ तोर घर के सब काम होवे है। उजाला रेडियो के साथ तो हाँ, हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो तू जा

0: कोट रहा हुआ
1: तोर विवाह होने वाले हैं, तोर शादी होने वाले हैं, सुन वालों तो दीजिए आप फरमाइश ऑफ उजाला रेडियो 15 फरमाइश 15 आवाज़ फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो दिस खाई बिनकोट रहा तोर विवाह होने वाले हैं, तोर शादी होने वाला है नेम कॉन्टैक्ट ऑफ मैट उजाला रेडियो ईमेल info@ujala.nl 15 आवाज़ फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो

David RJ. Goedemorgen met RJ. Hallo RJ. Goedemorgen RJ. Hallo. उजाला के साथ घर घर में ओटो में चाहे जहां पर भी हैं आप उजाला ही उजाला सुनते हैं उजाला के साथ अनहेल खुद मोहम्मद आर जे गुड मॉर्निंग

0: Live vanuit de Hoofdstad. Oezana Radio.
1: अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां हैं, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश, 15 आवाजें फॉर मोर 100 यूरो ऑन उजाला रेडियो, स्टूर योर ईमेल नर info@ujala.nl, info@ujala.nl, 15 आवाजें फॉर मोर 100 यूरो ऑन उजाला रेडियो।

उन दिनों की बात है, ये उन दिनों की बात है जब हम पागल पागल फिरते थे। सोनू निगम एंड सरिका कपूर से आप सुने, फिल्म का नाम है तुमसे अच्छा कौन है। तुमसे अच्छा कौन है और ये उजाला रेडियो है।

जिंदगी बन गए हो तुम। फिल्म कसूर और गीत के गाने वाले अलका याग्निक और उदित नारायण जी।

उजाला रेडियो का प्रोग्राम जो आप लोग सुन रहे हैं, यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम है। हमारे प्यारे सुनने वालों, मैं हूं सुभाष।

आप सभी सुनने वालों को प्यार से दुलार से स्वागत कर रहा हूँ। चाहे जहां पर आप लोग प्रोग्राम को बैठ करके सुनते होंगे,

वलियार चुमलू होट तेरे यही दिल की ख्वाहिश है, कितनी हसीन लग रही हो मेरी नजर से देखो तुम। वलियार क्या गाना था।

गल यार, दिल तो खोया है यहीं पर कहीं आपके पास, और यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम है। चलिए अब की बार गीत जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे,

0: वेल यार, तुम दिल की धड़कन में रहते हो, मेरा एक सपना है, तुम सपने में रहने दो।
1: बस तुम रहते हो।
0: आओ इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुन रहे थे यार, और वो भी अभिजीत जी के आवाज में। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, दिल चुरा लिया है यार।

वेल वेल वेल वेल यार, दिल दिल दिल जो है तो दिल चुरा लिया। एंड इस बार हम तो दीवाने हुए यार, हम तो दीवाने हुए यार।

राहुल बलियार हम तो दीवाने हुए यार, अब तेरे हुए यार। इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुन रहे थे, यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम जो आप लोग सुन रहे हैं। दिल की अब की बार गाना जो प्रोग्राम में हम आप लोग को सुनाने वाले एक बार और अभिजीत की आवाज में गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे।

अगर तुम कहो तो कोई ऐसा गीत मैं गाऊं, आओ इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुने अभिजीत जी के आवाज में। चलिए इस बार लता एंड कुमार सानू जी के आवाज में गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे।

ओ बेलियर मधोस दिल की धड़कन। और इस तरह से लता एंड कुमार सानू जी की आवाज में गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुन रहे थे। यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम है। हमारे प्यारे सुनने वालों, हमारा तार का नंबर है 9 3 9 9 7 पर आप लोग तार कर सके हैं। अगर आपको कुछ पूछना है, कुछ जानना हो,

वेल वेल यार, ओ जाना ये दिल है तेरा आशिक दीवाना। अब इस तरह से खास करके देखा जाए लता एन कुमार सानू जी की आवाज में गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुन रहे थे। एंड चलिए इस बार उदित नारायण एंड लता जी की आवाज में गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे।

पुण्य संस्कार होने वाले हैं उजाला रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश फॉर्मर होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नर info@ujala.net info@ujala.net

बदल जाए दुनिया ना बदलेंगे हम तुम्हारी कसम। द मैन विद अ गोल्डन वॉइस, तलत महमूद की आवाज में आप सुने फिल्म कैप्टन किशोर का गीत और ये उजाला रेडियो है। मुकेश जी हिस्सा ले रहा है।

जल मिले नदी के जल में, और नदी मिले सागर में, और सागर मिले कौन सी जल में, ये कोई जाने ना। मुकेश जी की आवाज़, फिल्म अनोखी रात से गीत को आप सुनें।

0: are.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A2 van Maastricht naar de Belgische grens staat bij IJsden een file van 3 kilometer. De vertraging is een kwartier. Staat een vrachtwagen met pech waardoor de rechte rijstrook dicht is. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राहत फतेह अली खान और ये है उजाला रेडियो। उजाला रेडियो को सुनते रहिए और मधुर मधुर संगीत जो है वो सुनते रहिए उजाला रेडियो पे, और मेरे भी गाने सुनिए औरों के भी सुरीले गाने सुनिए।
3: उजाला रेडियो पर सुनिए यादगार गीत।

निशाना हो तुम मिस नहीं करना। ए तुझे लड़ना ही होगा, चाहे कट जाए टांगे आगे बढ़ना ही होगा। याद रख फेम किराए का मकान है, एक दिन तुझे इसे खाली

रात और दिन के देवे है तोर साथ, के तोर साथ सोते है, के तोर साथ जागे है, केकर साथ तू ओतो में घूमे है, और केकर साथ तोर घर के सब काम होवे है। उजाला रेडियो के साथ तो हाँ, हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो तुझ

आठ बजकर छह मिनट गुजर चुके हैं मेरे प्यारे सुनने वालों, दिस इज उजाला रेडियो और मैं हूं रतन राम दुलारे पांडे। सभी सुनने वालों को रतन का प्यार भरा नमस्कार और अदा पड़ से। आप जहां पर भी हैं, जिस हाल में आप हैं, तहे दिल से स्वागत करता हूं आप सभी को। अच्छा दोनों तरफ फिर तीन मैं मेरे प्यारे सुनने वालों, फिर तीन मैं ट्वेंटक से संतक अब से रात्रि में 11 बजे तक आपका सेवा हम करेंगे। लाइफ एंड आर एक यूआर के स्टूडियो रोटरडाम से हम पेश करने वाले हैं प्रोग्राम दिल की आवाज, प्रोग्राम जिसमें रोमांटिक सॉन्ग्स के साथ साथ भी कुछ दर्द भरे नगमाएं जो हमेशा शामिल होते हैं और नगमाएं आप तक हम पेश करने वाले हैं एक एक निकाल कर इस प्लेलिस्ट से। उम्मीद और आशा करते हैं कि आज का दिन आपका बहुत खूबसूरत गुजरे हो। वैसे तो बहुत विसल फालक था आज का ये दिन, बारिश तो कभी धूप तो कभी छांव, धीमी धीमी सी हवा भी थे और वो हवा ठंडी भी थे, लेकिन फिर भी दिन बहुत अच्छा था, मख निकला। मेरे प्यारे सुनने वालों, अभी ओपनिंग सिलेक्शन हम पेश करेंगे बहुत ही खूबसूरत गीत, लेकिन हम आपको बता दें कि हमारे प्रोग्राम के दौरान व्हाट्सएप के जरिए भी बातें आप कर सकते हैं स्टूडियो में। अगर आप व्हाट्सएप करना चाहोगे तो आप ऐप कर सकते हैं 020-363-0000 और रहे दफ्तर के कार्रवाई, जैसे कि आपके फरमाइश, जरूरी खबरें, मौत की खबरें, आपकी जानकारी के लिए इंफॉर्मेशन के वास्ते आप दफ्तर को तार करें सोमवार से शनिवार सुबह में 10 बजे शाम में 3 बजे तक फमान रख तो मित साध रख Smorgens vanaf 10 uur tot in de middag 3 uur. 020-409-0807. 020-409-0807. Maar natuurlijk aan mailbeker zegt hij. 24 ghante saad din lagataar. info@ujala.nl info@ujala.nl. बहुत सारे लोग आज छुट्टी थे या है तो काम पर गए नहीं, लेकिन मुझे मालूम है कि बहुत सारे लोग भी खून काम करी सकते, और उन लोगों को हम यही कहेंगे कि कीप अप, दिल लगा कर काम करना। एंड सोनर यूली सैम है ओक नेरखंस, आप काम कर रहे हैं इसलिए तो दुकानें खुले हैं, अस्पताल खुले हैं, हवा जहां खुलल है, लोग टैक्सी से इधर से उधर जा सकते हैं, ट्रेन या तो मेट्रो के साथ, ट्रेन के साथ इस पार से उस पार जा सकते हैं। ये आपके बदौलत है, क्योंकि आज आपका छुट्टी नहीं, आप काम कर रहे हैं। तो आप लोगों को भी स्वागत हम करते हैं आज के प्रोग्राम में मेरे प्यारे सुनो दिल की आवाज में। आज का ओपनिंग सिलेक्शन पेश करने जा रहा हूँ इंदवर साहब जी, एक महान कवि, इनका लिखा हुआ गीत किशोर कुमार की आवाज में हियर ऑन यू आर। शुभरात्रि मेरे प्यारे सुनो, शुभरात्रि आपको कहते हुए आप आनंद ले इस गीत के साथ।

समय तो है एक चंचल धारा, कौन इसे लौटाएगा, बिछड़ा साथी टूटा तारा, फिर ना कभी मिल पाएगा, जिससे भी मिलना बस प्यार से मिलना, हाँ जिससे भी मिलना प्यार से मिलना, दिल ना किसी का तोड़ना, क्योंकि साथ ही मिलते हैं बड़ी ही मुश्किल से, किसी का साथ ना छोड़ना। इंदवर साहब जी का लिखा हुआ ये दर्द भरे अल्फाजे, जिसमें बहुत सारे प्यार भी है मेरे प्यारे सुनने वालों, और किशोर कुमार ने गीत को गाकर सुनाए हैं। आप तक हमने बहुत ही प्रेम और प्यार के साथ पेश किया है आज का ओपनिंग सिलेक्शन फ्रॉम द मूवी एक हंस का जोड़ा। उजाला रेडियो है ये मेरे प्यारे सुनने वालों, दिल की आवाज आप सुन रहे हैं, स्वागत है तहे दिल से आप सभी को फिर एक बार रतन का प्यार भरा नमस्कार और आरापर से। एक रोमांटिक सॉन्ग की ओर आपको ले चलते हैं, जो समीर जी ने लिखा और काफी पॉपुलर ये नगमा जो मिलकर गाएंगे अलका याग्निक और टाइगर ऑफ बंगाल कुमार सानू, कि देखा जो तुमको ये दिल को क्या हुआ है, मेरी धड़कनों पे ये छाया क्या नशा है।

भीगी पलकों से और चोरी चोरी पलकों से क्यों मेरा सपना चुराए, इन झुकी झुकी अखियों से धीरे धीरे बतियों से क्यों मुझे अपना बनाए। मेरी नजरों पे छाए खुशबू के जैसे आए, मेरा तन मन महकाए, सांसों में ये पल पल जाने कैसे हलचल कुछ भी तो समझ में ना आए। देखो शरारत हो ना जाए और मोहब्बत हो ना जाए, इन्हें संभालूं कैसे तू ही तो बता। ब्यूटीफुल रोमांटिक सॉन्ग मेरे प्यारे सुनने वालों, अगर दिल किस पे हो जाए, लग गया ये दिल किसी से तो उन्हें लाग भी आप रोकने की कोशिश करेंगे, ये रुकेगा नहीं। Als de hart op hol slaat, dan moet je gewoon oppassen. Ye tha Alka Yagnik aur Kumar Sanu ki awaazein, Zameer ka likha hua geet jo humne nikale hain film Kasoor. Kasoor se geet humne nikale hain aur dil ki awaaz mein agle romantic song ki aur hum aapko le chalte hain jo mahaan kavi songwriter जावेद अख्तर जी ने लिखा और गीत जो मिलकर गाएंगे वंस अगेन अलका याग्निक, लेकिन अब की बार विद मैन द नेम दैट स्पेल्स मैजिक उदित नारायण जी, ये दोनों मिलकर गीत खूबसूरत गाएंगे आप सभी के लिए। आरज़ू की राहों में और धड़कनों की बाहों में

आरज़ू की राहों में और धड़कनों की बाहों में, आओ घर बनाए हम फिर वो घर सजाए हम, अपना प्यार मैं लाऊं और अपना रूप तुम लाना। खूबसूरत प्यार भरे नगमा जावेद अख्तर जी का लिखा हुआ, द नेम दैट स्पेल्स मैजिक उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजें। फिल्म का नाम कारोबार, मेरे प्यारे सुनने वालों, कारोबार से हमने नगमा निकाले हैं। उजाला रेडियो है ये, मेरे प्यारे सुनने वालों, 2 मिनट तो गुजर चुके हैं, 8:30 दिल की आवाज आप सुन रहे हैं और मैं हूं आपका यारो क्या रतन। अब की बार लिखे एक और महान कवि नीरज साहब जी का लिखा हुआ गीत पेश करने जा रहा हूं, रोमांटिक सॉन्ग में गिना जाता है और नाइटिंगेल आशा जी की आवाज की, लकड़ी जली कोयला बनी कोयला बना है धूल, मैं पापन ऐसी जली कोयला बनी ना धूल, देखे ना धुआं देखे ना आंगन, किसी है ये जलन। इस तरह का कुछ नगमा है मैं पेश करने जा रहा हूं सेवा में, ये नगमा।

या धमाकेदार सॉन्ग। लकड़ी जले कोयला बनी है ढोल, कभी कभी जलन होते हैं किसी के प्यार पर, क्योंकि आपको खुद को प्यार नहीं, लेकिन कभी कभी आप जलते हैं क्योंकि आपको प्यार है, बहुत है किसी के लिए। जो सत्तीस आउट ये था नीरज का लिखा हुआ है गीत जो नाइटिंगेल आशा जी ने गाए हैं, और ये है फिल्म छुपा रुस्तम का एक नगमा। मेरे प्यारे सुनने वालों, आपको मालूम रहे कि आने वाले शनिवार 16 तारीख मई को रात्रि में 7 बजे से रात्रि में 12 बजे तक 5 घंटे लगातार सेवा करने चले आएंगे लेकर प्रोग्राम सैटरडे नाइट फीवर फन ऑफ सेव यूर टॉट मिड नाइट हियर ऑफ यू आर विद द फाइनेस्ट लोकल्स। आप तक हम पेश करेंगे रानी मलिक जी का लिखा हुआ गीत पेश करने जा रहा हूं मेरे प्यारे सुनने वालों, और गीत द टाइगर ऑफ बंगाल कुमार सानू गाकर सुनाएंगे। उतरा ना दिल में कोई इस दिल रुबा के बाद, लब पे इसी का नाम है आता खुदा के बाद। अरे बाप रे, चलो हम इसे सुने, ये क्या लिखा है रानी मलिक जी और क्या गाएंगे कुमार सानू जी। रिमेंबर दिस इज यू आर दिल की आवाज़।

देखे हैं फूल तारे हवाएं घटा चमन, भीगे लगे हैं रंग ये भीगे लगे हैं ये रंग, तेरी हर अदा के बाद बहुत ही खूबसूरत गीत उतरा ना दिल में कोई इस दिल रुबा के बाद। रानी मलिक जी का लिखा हुआ गीत, कुमार सानू की आवाज और फिल्म का नाम उफ ये मोहब्बत। क्या नाम है फिल्म का, उफ ये मोहब्बत। अगर आप व्हाट्सएप करना चाहोगे स्टूडियो में मेरे प्यारे सुनने वालों, जैसे कि प्रिंसेस राज ने किया है रोतनाम का, अरण्यम का शारदा ने किए हैं, डनाह का उषा जी, मार्सब्रुक का हेरेंद्रू और चित्रा जी, आमस्टरडम का सुनील, डनाह शहर का मिक और अम्सल्फेन का सुशीला चंद्रिका सिंह जी, आप सभी को ऐप करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, डंकेवेल, शुक्रिया, करम, मेहरबानी। आनंद बख्शी जी का लिखा हुआ गीत की ओर आपको ले चलेंगे, एक गीत जो सुरों का बादशाह द लेजेंड पटमा श्री मोहम्मद रफी साहब जी गाएंगे और वो भी संगीत की देवी लता जी के साथ। तेरी हसी निगाह का एहसान मंद हूँ मैं, खुश नसीब हूँ कि मैं तुझको पसंद हूँ। प्यार भरे अल्फाजे हैं मेरे प्यारे सुनने वालों जो आनंद बख्शी जी ने लिखा, और चलो हम इसे सुने बहुत ही प्यार के साथ।

दिन हो खुशी की गम का जमाना, किसी हाल में भी तू ये ना भुलाना, मैं तेरा गम गुजार तेरा दर्द मंद हूँ, तेरी हंसी निगाह का एहसान मंद हूँ। प्यार भरा नगमा आनंद बख्शी जी का लिखा हुआ, मिलकर गीत गाए संगीत की देवी लता और सुरों का बादशाह ललित पद्माश्री मोहम्मद रफी साहब जी। फिल्म का नाम देवी, मेरे प्यारे सुनने वालों, देवी फिल्म से हमने नगमा को निकाले और धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं 9 बजे के ब्रेक की ओर। मेरे प्यारे सुनने वालों, अब की बार गीत रोमांटिक समीर का लिखा हुआ, शरदा पंडित और सोनू निगम की आवाजें।

श्रद्धा पंडित और नटूर लकी था सोनू निगम और वो भी समीर का लिखा हुआ गीत फ्रॉम द मूवी संघर्ष। ये है मुकेश जी इस गीत के बाद ब्रेक मेरे प्यारे सुनने वालों।

0: वफा जो तुमसे कभी मैंने निभाई होती, उम्र ना मुफ्त में सड़कों पे गवाई होती। डट भरे गीत मेरे प्यारे सुनने वालों, तलत असीज की आवाज में आप सभी ने सुने और सूरज सानिम का लिखा हुआ एक एक अल्फाज तलत जी ने गाकर सुनाए। फिल्म का नाम डैडी। मेरे प्यारे सुनने वालों, 9:09 गुजर चुके हैं मेरे प्यारे सुनने वालों, ये है उजाला रेडियो, दिल की आवाज आप सुन रहे हैं और प्रोग्राम एकदम लाइव एंड डायरेक्ट यू आर के स्टूडियो रतनाम से आप तक पेश हो रहे हैं। स्वागत करता हूं आप सभी को, मैं हूं आपका यार का यार रतन राम दुलारे पांडे और रात्रि में 11 बजे तक आपका साथ हम देंगे और आप देख रहे हैं बहुत सारे प्यार भरे नगमाए हैं हमेशा ये प्रोग्राम में, लेकिन इधर उधर कुछ ना कुछ डर भरे भी इसमें शामिल है। सुधाकर शर्मा जी का लिखा हुआ एक गीत जो काफी पॉपुलर है, गीत गाएंगे द नेम दैट स्पेल्स मैजिक उदित नारायण, और कुछ इस तरह गीत का बोल है कि तूने जिंदगी में आके मेरी जिंदगी बदल दी।
1: तुमसा कोई दूसरा इस समय पे हुआ तो रब से शिकायत होगी, तुम्हारी तरफ रुख किसी गैर का हुआ तो कयामत से पहले का।

कौन सा कोई दूसरा जमी पर हो तो रब से शिकायत होगी, तुम्हारी तरफ रूह किसी खैर का हुआ तो कयामत से पहले कयामत होगी। तूने जिंदगी में आके जिंदगी, हाँ जिंदगी बदल दी, और तूने यूं प्यार निभा के मेरी जिंदगी बदल दी। द नेम दैट स्पेल्स मैजिक, उदित नारायण की आवाज, सुधाकर शर्मा जी का लिखा हुआ गीत, और ये था फिल्म हमराज का एक नगमा। प्रभा जी दंकिवेल, प्रभा जी आयताम सदाम सेंट्रम प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं, उजाला रेडियो से जुड़े हुए हैं, आपके ऐप के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किशोर कुमार और नाइटिंगेल आशा जी अब की बार सेवा में हम पेश करने जा रहे हैं महान कवि मजरू सुल्तानपुरी जी। क्या क्या नगमाएं मजरू जी ने लिखा, और बहुत सारे आप जानते हैं और पसंद भी करते हैं, और ये एक नगमा है जो मैं पसंद करता हूं, सेवा में पेश कर रहा हूं। हाँ जी, यहां है, पेश करता हूं सेवा में किशोर कुमार और नाइटिंगेल आशा जी।

मैंने तुमको चाहा रे पहली बार, खूबसूरत गीत मेरे प्यारे सुनने वालों सेवा में जो हमने पेश किया है। प्यार भी था इसमें, डर भी था। किशोर कुमार ने गीत गाकर सुनाए हैं नाइटिंगेल आशा जी के साथ और महान कवि सॉन्ग राइटर मजरूह सुल्तानपुरी जी का लिखा हुआ गीत फ्रॉम द मूवी डबल क्रॉस। खतरनाक नाम ये मूवी का है और इसमें से निकालेंगे एक रोमांटिक सॉन्ग। फिल्म का नाम है माफिया और रोमांटिक सॉन्ग जो है समीर का लिखा हुआ। इक्की जो मिलकर गाएंगे कुमार सानू जी और अलका याग्निक कि ये दिल ये पागल दिल मेरा हर पल तुझे आवाज़

दिल, ये पागल दिल मेरा हर पल तुझे आवाज दे। खूबसूरत गीत मेरे प्यारे सुनने वालों, समीर का लिखा हुआ, द टाइगर ऑफ बंगाल, कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजें, फिल्म का नाम माफिया। दिल की आवाज है ये मेरे प्यारे सुनने वालों, और मैं देखता हूं अब की बार एक पुराने गीत की ओर हम आपको ले चलेंगे, एक रोमांटिक छेड़छाड़ सॉन्ग। महान संगीत लिखने वाले जिनके गाने अमर है, द ग्रेट हसरत जयपुरी जी, इनका लिखा हुआ गीत हम पेश करने जा रहे हैं। गाने वाले हैं द लेजेंड पद्माश्री, सुरों का बादशाह रफी साहब जी। और पहली नजर में दिल मेरा ईमान से गया, आंखों में रंग आ गया, इस जान से गया, तेरी अदा की बात भी इतनी सी बात है, जो कोई तुझको जान गया वो जान से गया, ऐ जाने मन ले गया दिल वो तेरा ये भोलापन।

इशारा जैसे जमीन पर निकला सितारा, तुझ पे हसीना दिल में निहारा, शर्मा के तूने हाय मुझे मारा।

दिल मैंने हारा, शर्मा के तुमने हाय जो मुस्कुराया, ऐ जाने मन ले गया दिल वो तेरा ये भोलापन। खूबसूरत गीत हसरत जयपुरी जी का लिखा हुआ रोमांटिक छेड़छाड़ सॉन्ग, सुरों का बादशाह रफी साहब जी की आवाज, हरे कांच की चूड़ियां फिल्म का नाम, हरे कांच की चूड़ियां। हाँ जी, उजाला रेडियो है ये मेरे प्यारे सुनो, हर एक इंफॉर्मेशन जानकारी के लिए तार का नंबर, ईमेल एड्रेस, बहुत जानकारी आपको मिलेंगे www.ujala.nl पर। तू जाने तो हसरत जयपुरी जी के बाद महान कवि सॉन्ग राइटर आनंद बख्शी जी, इनका लिखा हुआ गीत पेश करने जा रहा हूं। एक गीत जो संगीत की देवी लता जी गाएंगे सोनू निगम के साथ, और नगमा यह है

पहली मोहब्बत और पहला इशारा, कैसी जमी पर निकला सितारा, तुझ पे हसीना

जाने कब से दिल में है तू, जब से मैं हूँ तब से है तू, और मुझको मेरी रब की कसम यारा रब से पहले है तू। खूबसूरत गीत मेरे प्यारे सुनने वालों, रोमांटिक सॉन्ग आनंद बख्शी जी के हाथों से लिखा गया है और मिलकर गाए हैं अपनी खूबसूरत आवाजों में संगीत की देवी लता जी और सोनू निगम। मुझसे दोस्ती करोगी फिल्म का नाम। दिल की आवाज है ये मेरे प्यारे सुनने वालों, और दिल की आवाज में एक दर्द भरे नगमा अब की बार जो हम पेश करने जा रहे हैं, एक गीत जो समीर ने लिखा और द नेम दैट स्पेल्स मैजिक उदित नारायण गाकर सुनाएंगे ये नगमा। क्यों किसी को वफा के बदले वफा नहीं मिलता,

लोग इश्क में क्या से क्या हुए, मिल गए कभी तो फिर जुदा हुए। बस खिजां मिली इस बहार में और उम्र कट रही है इंतजार में। क्यों किसी को हंसी के बदले में हंसी नहीं मिलती और क्यों किसी को वफा के बदले में वफा नहीं मिलती, ये प्यार में क्यों होता है। उदित नारायण मेरे प्यारे सुनो वालों, द नेम दैट स्पेल्स मैजिक, उदित नारायण की आवाज, समीर का लिखा हुआ गीत इन्होंने गाकर सुनाए हैं। फिल्म का नाम तेरे नाम। 12 मिनट बाकी है मेरे प्यारे सुनो वालों और वो भी 10 बजने में, 12 मिनट टू 4 o'clock फन तीन, दिल की आवाज है ये और पेश करने जा रहा हूं गीत बहुत ही खूबसूरत, कविता जी आउट न्यूयॉर्क सिटी डेबी कैपल, आपकी ऐप के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इतना टू लक्स है वो फरिंदर, उजाला रेडियो से आप जुड़े हुए हैं और उजाला रेडियो का मैं हूं टोना टूलक, हमें आपसे दोस्ती है, आप भरपूर एंजॉय करें। मजरू सुल्तानपुरी जी जो एक महान कवि है, सॉन्ग राइटर है, इनका लिखा हुआ एक गीत नाइटिंगेल आशा जी की आवाज में पेश करने जा रहा हूं। रात अकेली है और सारे दिए बुझ गए, आके मेरे पास कानों में मेरे, जो भी चाहे कहिए, अब जो भी चाहे कहिए, क्या बात है।

अकेली है और बुझ गए दिए, आंखें मेरे पास कानों में मेरे, अब जो भी चाहे कहिए, हाँ जो भी चाहे कहिए। खूबसूरत गीत नाइटिंगेल आशा जी की आवाज और मजरू सुल्तानपुरी जी का लिखा हुआ, जबल थीफ फिल्म का नाम जबल थीफ। मेरे प्यारे सुनो, इस घंटे का आखिरी गीत पेश करने जा रहा हूँ, उसके बाद 10 बजे का ब्रेक सुनेंगे और उस ब्रेक के बाद आप सभी से फिर हम जरूर से जरूर मिलेंगे। जैसे सुनिधि चौहान कुमार का लिखा हुआ गीत फ्रॉम द मूवी मर्डर 2।

दुआ भी लगे ना मुझे, दवा भी लगे ना मुझे, जब से दिल को मेरे तू लगा है। नींद रातों की मेरी, चाहत बातों की मेरी, चैन को भी मेरा तूने यूं ठागा है। जब से सांसें भरूं मैं, बंद आंखें करूं मैं, नजर तू यारा आया, और दिल को करार आया, तुझ पे है प्यार आया, पहली पहली बार आया मेरे वो यारा। खूबसूरत गीत, खूबसूरत अल्फाज़े प्यार भरा, राणा जी के जरिए लिखा गया, राणा ने लिखा और मिलकर गीत गाए हैं अपने खूबसूरत आवाजों में यजर डिजाय और नेहा कक्कर। रिमेम्बर दिस इज यू आर, मेरे प्यारे सुनने वालों, 11 मिनट गुजर चुके हैं और वो भी 10 बजकर। दिल की आवाज आप सुन रहे हैं लाइव एंड डायरेक्ट यू आर के स्टूडियो रतनाम से। मैं हूं आपका यारो का यार रतन राम दुलारे पांडे, और ये आखिरी घंटा है क्योंकि 11 बजे तक आपका साथ हम देंगे। लेडन या लेडर दौरप में रहते हैं, लेकिन इस वक्त इतना दूर बलखराई में है और प्रोग्राम से आनंद ले रहे हैं स्वागरी सरवन नाजी, और जितने लोग भी आपके साथ हैं बहुत बहुत धन्यवाद स्वागरी सरवन नागी जी आपके ऐप के लिए। एंजॉय, और या वसी मकार खाओ होपलक। एक गीत की ओर आपको ले चलेंगे, महान सॉन्ग राइटर कवि आनंद बख्शी जी का लिखा हुआ एक मशहूर नगमा, और ये गीत यकीनन आप पसंद करेंगे क्योंकि बहुत पॉपुलर सॉन्ग है आनंद बख्शी जी इनका लिखा हुआ, और जो मिलकर गाए हैं संगीत की देवी लता जी और सुरेश वाडकर ये नगमा।

ओ मेरे सनम तेरा खत मिला और खत में तूने खत लिखने को लिखा, लेकिन देखो ना खत के बदले मैं आ गया। प्यार भरा नगमा रोमांटिक सॉन्ग आनंद बख्शी जी का लिखा हुआ, संगीत की देवी लता जी और सुरेश वाडकर।

हाँ जी, सुरेश बात कर रहा हूँ। लता जी की आवाजें, पले खां फिल्म का नाम। मेरे प्यारे सुनने वालों, पले खां से हमने नगमा को निकाले, और क्योंकि ये दिल की आवाज, वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग, जरूर से जरूर हमारे फेवरेट सॉन्ग की लिस्ट में ये गीत भी शामिल है। और आप तक पेश करना चाहूंगा, अभी अभी मेरी नजर में आई है, हमने सोचा वाह व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, क्यों ना इसे हम पेश करें सुनने वालों के लिए। समीर का लिखा हुआ ये नगमा है और श्रेया घोषाल और अर्णब चक्रवर्ती जी की आवाजें की वादा रहा प्यार से प्यार का।

दोनों जहां को भूला हूं मैं, ऐसी लगी है तुझसे लगन, चाहे कहो इसे दीवानगी, चाहे कहो इसे दीवानापन, दिल ने ये कहा, दिल ने ये सुना, मैंने तुम्हें दिल भर चुना, तो अब डोरियां ना रहे डरमियां, क्या रंग लाई ये वफा। श्रेया घोषाल और अर्नाब चक्रवर्ती जी की आवाजें, समीर का लिखा हुआ गीत, दोनों ने मिलकर गीत गाए हैं फ्रॉम द मूवी खाकी। 5 मिनट बाकी है मेरे प्यारे से नॉलो सरे 10 बजने में, और एक पुराने, हाँ जी, एक पुराने डर भरे गीत की ओर आपको ले चलते हैं। गीत कमार जलालाबड़ी जी का लिखा हुआ और द हार्ट ऑफ मिलियंस मायती मुकेश जी की आवाज में गीत हम पेश करने जा रहे हैं कि मैं तो एक ख्वाब हूं और इस ख्वाब से तू प्यार ना कर।

मैं तो एक ख्वाब हूँ इस ख्वाब से इधर खत्म फौत। मैं तो एक ख्वाब हूँ इस ख्वाब से तू प्यार ना कर, और अगर प्यार हो जाए तो यूं प्यार से तू इकरार ना कर। The Heart of Millions, मायती मुकेश जी की आवाज। मेरे प्यारे सुनने वालों, कमार जलालाबादी जी का लिखा हुआ गीत, और ये था फिल्म हिमालय की गोद में। ये फिल्म हिमालय की गोद में का एक नगमा मुकेश जी का हमने आप तक पेश किया है।

अलमेरा बैठे में रहते हैं, लेकिन इस वक्त स्विट्जरलैंड में प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं स्वागरी और सराज राज और आरती नंदन। तो आप दोनों को कहेंगे खनित फैमिली वैकेंसी, एंजॉय स्विट्जरलैंड एंड एंजॉय यू आर लेकर बीर च लगे रहो। मेरे प्यारे सुनो लो, अगले गीत की ओर आपको ले चलेंगे। एक रोमांटिक सॉन्ग है, एक गीत जो उषा खन्ना जी का लिखा हुआ और जो मिलकर गीत गाएंगे सुरेश वाडकर और हेमलता। पेश करता हूं

ऐ सनम ये बता, ऐ सनम ये बता, मौसम है क्यों बेखरार, तूने कानों में जरूर कह दी ऐसी वैसी बात, मेरे हमदम ये बता, बहकी हुई क्यों ये घटा, तूने आंखों आंखों में जरूर कह दी ऐसी वैसी बात। खूबसूरत नगमा मेरे प्यारे सुनने वालों, उषा खन्ना जी का लिखा हुआ और जो मिलकर गाए हैं अपनी खूबसूरत आवाजों में सुरेश वाडकर और हेमलता। यह है राजू डाडा का एक फिल्म या एक नगमा, सॉरी राजू डाडा फिल्म है और गीत था ये फिल्म का। दिल की आवाज है ये मेरे प्यारे सुनने वालों, और एक दर्द भरे गीत, एक ऐसा गीत मेरे प्यारे सुनने वालों, फिल्म फेयर अवार्ड नॉमिनी सॉन्ग को पेश करने जा रहा हूं और ये गीत जीता भी फिल्म फेयर अवार्ड। महान कवि जिसकी संगीत अमर है, वो खुद ही अमर है, द ग्रेट द वन एंड ओनली हसरत जयपुरी जी, इनका लिखा हुआ गीत पेश करने जा रहा हूं। शुरू का बादशाह द लेजेंड पटना श्री मोहम्मद रफी साहब जी के, दिल के झरोखों में तुझको बिठाकर, यादों को तेरी मैं दुल्हन बनाकर, रखूंगा मैं दिल के पास, मत हो मेरी जान उदास। ब्यूटीफुल सॉन्ग लेकिन डर भरा।

कल तेरे जलवे पराए भी होंगे, लेकिन झलक मेरे ख्वाबों में होगी। फूलों की डोली में होगी तू रुखसत, और लेकिन ये महक मेरे सांसों में होगी। दिल के झरोकों में तुझको बिठाकर, यादों को तेरी मैं दुल्हन बनाकर रखूंगा मैं दिल के पास। मदद हो मेरी जान उदास। अमर संगीत फिल्म फेयर अवार्ड नॉमिनी और जीता हुआ गीत हसरत जयपुरी जी इनका लिखा हुआ, द लेजेंड पद्माश्री सुरों का बादशाह रफी साहब जी की आवाज, फिल्म का नाम ब्रह्मचारी। मेरे प्यारे सुनने वालों, हसीनों के पुजारी किशोर कुमार अब की बार और नाइटिंगेल आशा जी, विठल भाई पाटिल जी का लिखा हुआ गीत कि मौसम भीगा भीगा पेश करता हूं।

मौसम भीगा भीगा और वो भी मेरे प्यारे सुनने वालों बालम सीधा सीधा किशोर कुमार और नाइटिंगेल आशा जी का ये गीत विठल भाई पाटिल जी का लिखा हुआ हमने पेश किया है गहरा सखम फिल्म का नाम तीन घंटे का ये प्रोग्राम दिल की आवाज देखते देखते निकल गया ये वक्त हम अगले गीत की ओर आपको ले चलते हैं मेरे प्यारी सुनो मैं देखता हूँ व्हाट्सएप पर इल्स रामदयाल अयोध्यन हल्दर भी ऐप किए हैं थैंक यू वेल इल्स जी अयोध्यन हल्दर फैन द चौका फर्स्ट टाइम बिन ऐप करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र जी का लिखा हुआ गीत मेरे प्यारे सुनने वालों लता जी की आवाज में ये नगमा पेश करता हूँ

जाके गया सपना मेरा, बैठी हूँ कब हो सवेरा। महान कवि अमर संगीत लिखने वाले शैलेंद्र जी का लिखा हुआ ये नगमा संगीत की देवी लता जी की आवाज में आप तक हमने पेश किया है। जबलती फिल्म का नाम। प्यारे सुनोला, आप सुन रहे हैं इस धुन के साथ ये प्रोग्राम को आराम करते हैं और इस धुन के साथ भी प्रोग्राम का आखिरी गीत पेश करता हूँ, उसके बाद यहाँ स्टूडियो से हम रुखसत होंगे। मुकेश जी के नगमा से आज हम आप सभी से आज्ञा लेंगे। एंड नतुलक मफरो एंड मनेर बिहारी और ब्रेरा डांकी वेल आपके ऐप के लिए एंड खफील सितीर्थ मैथ क्लाइंट डॉक्टर डांकी वेल आपके ऐप के लिए। मुकेश का एक नगमा के साथ आज प्रोग्राम को हम समापित करेंगे। मेरे प्यारे सुन वालों, आज हम जुड़ा हो रहे हैं क्योंकि जुड़ा नहीं होंगे तो हम फिर मिलेंगे कैसे, और मिलेंगे आप सभी से आने वाले शनिवार 16 तारीख मई को रात्रि में 7 बजे हम हाजिर रहेंगे। यही स्टूडियो रोहतांग से पेश करेंगे 5 घंटे लगातार प्रोग्राम लोकल सैटरडे नाइट फीवर। तो आज साथ देने के लिए मेरे प्यारे सुनने वालों बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्यू वेल, शुक्रिया, करम मेहरबानी, और आज्ञा दीजिए आने वाले शनिवार को जबकि हम ये सुंदर सा प्रोग्राम सैटरडे नाइट फीवर मौका मिल रहे हैं फिर पेश करने का। उम्मीद और आशा करते हैं कि भरपूर आप सभी मेरे साथ देंगे। रहा फूल तो फिर खिलेंगे, और रहा ये खूबसूरत जिंदगी तो हम जरूर फिर मिलेंगे। सभी को रतन का प्यार भरा नमस्कार और खुदा हाफिज। टेक केयर और रिमेम्बर, आई लव यू ऑल।

0: ये है उजाला रेडियो, रात और दिन, सुबह से लेकर शाम तक, 24 घंटे सिर्फ आपके लिए।
1: हेलो, पापा की जिद के आगे हार गए। शादी हो रही है मेरी, हो सके तो भूल जाना।
2: ऐसे कैसे भूल जाऊं तुम्हें, प्यार छोटा नहीं है मेरा।

अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता, मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें कर

ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर ये दिल है कि कह रहा है कि तुम यही हो, यही।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहे लोगों को बता दें। हां हमको मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

उजाला रेडियो देश भर में सुनाई देता है फिया दे बी प्लस तोर घर में तोर ओतु में तू बता दे सबको इसे उजाला रेडियो दे या बी प्लस पर देश भर में उजाला रेडियो द क्रोस्ट कैट द बेस्ट उजाला रेडियो